0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर 1800-2100 पर और पाए समाधान।
3: हेलो जयपुर में आज बुधवार के दिन कार्यक्रम यायावर होता है, जहां हम आज का कार्यक्रम समर्पित कर रहे हैं शेखावाटी के सिरमौर यानी मंडावा को। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित मंडावा शेखावाटी क्षेत्र का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है। इसे अक्सर ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। 18वीं शताब्दी में स्थापित मंडावा व्यापारिक मार्गों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के समृद्ध व्यापारियों और मारवाड़ी परिवारों ने अपनी हवेलियों को इतना सुंदर चित्रकारी से सजाया है कि आज दुनिया भर के पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। श्रोताओं, मंडावा को शेखावाटी का सिरमौर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कला, वास्तुकला और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं यहाँ का भव्य मंडावा किला, रंग बिरंगी भित्ति चित्रों वाली हवेलियाँ, राजस्थान और यूरोपीय शैली का अनोखा मिश्रण और पारंपरिक शेखावाटी संस्कृति का जीवांत झलक। मंडावा का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है मंडावा फोर्ट। ऊंची प्राचीन और कलात्मक मेहराबों वाला यह किला कभी शेखावत राजाओं की शान हुआ करता था। आज यह किला विरासत होटल के रूप में पर्यटकों का स्वागत करता है। इसके दीवारों पर बने चित्र, शीशे का काम और राजस्थानी सजावट हमें सीधे राजपूताना काल में ले जाती है। शाम सुनहरी धूप किले की दीवारों पर पड़ते ही तो लगता है मानो इतिहास स्वयं मुस्कुरा रहा हो।

हेलो जयपुर में आज हम शेखावाटी के सिरमौर यानी कि मंडावा की बात कर रहे हैं। हमारा पहला पड़ाव जो है वो है मंडावा फोर्ट। ऊंची प्राचीनों वाला यह पुराना किला राजपूताना शान का प्रतीक है। इसकी दीवारों पर बनी चित्रकारी, शीशे का काम और सुंदर मेहराबें पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। सुबह की हल्की धूप में इस किले को देखना सचमुच यादगार अनुभव होता है। हमारा दूसरा पड़ाव है हनुमान प्रसाद गोयनका की हवेली। अब यह हवेली इतनी अद्भुत भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दीवार पर रामायण, महाभारत, राजस्थानी लोक जीवन और पुराने समय की रेलगाड़ी तथा मोटर कारों के चित्र बने हुए हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी हवेली एक जीवित कला दीर्घा है। मंडावा की अगली शानदार जगह है झुंझुनवाला हवेली। यहाँ की रंगीन दीवारें, लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक शेखावाटी स्थापत्य हर पर्यटक को आकर्षित करते हैं। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चौथा पड़ाव कौन सा होगा ये हम बताएंगे, लेकिन पहले ये गीत।

0: भाई मुझे अपने SBI अकाउंट का स्टेटमेंट एंड TDS इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, कहाँ से निकालूं?
1: तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, कॉल करो 1800-1234 या 1800-2100 और अपने सवालों का जवाब पाओ। सिंपली कॉल।
2: किसी भी प्रकार की SBI बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी के लिए सिंपली कॉल करें 1800-1234 या फिर

हेलो जयपुर सुन रहे हैं आप और हम शेखावाटी के सिरमौर यानी कि झुंझुनू के एक छोटे से क्षेत्र मंडावा की बात कर रहे हैं। मंडावा की अगली शानदार जगह है झुंझुनवाला हवेली। यहाँ की रंगीन दीवारें, लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक शेखावाटी स्थापत्य हर पर्यटक को आकर्षित करते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अब बारी है मुरमुरिया हवेली की। यह हवेली पारंपरिक और आधुनिक कला का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है। यहाँ की चित्रकारी में राजस्थान की संस्कृति के साथ साथ विदेशी प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि मंडावा को ओपन आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। अब घूमने के बाद अगर खरीदारी की बात ना हो तो यात्रा अधूरी लगती है। मंडावा का स्थानीय बाजार रंग बिरंगे बंदेज, लहरिया, राजस्थानी पगड़ियाँ, हस्तशिल्प, लकड़ी की कलाकृतियाँ और पारंपरिक आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मिठाइयाँ और राजस्थानी व्यंजन यानी दाल बाटी चूरमे, गट्टे की सब्जी और कैर सांगरी का स्वाद ज़रूर चखिएगा।

तो दोस्तों, आज इस रंगीन यात्रा में हमने देखा कि मंडावा केवल शहर नहीं बल्कि चित्रों से सजा हुआ इतिहास है। यहाँ की हवेलियाँ हमें बताती है कि दीवारों में भी कहानियाँ होती हैं, वो हमें कहानियाँ सुनाती है। राजस्थान की मिट्टी सचमुच रंगों और संस्कृति से भरी हुई है। अगर कभी शेखावाटी की ओर आपका सफर हो तो मंडावा को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल कीजिएगा। इसी खूबसूरत से संदेश के साथ मयूरी माथुर इस यायावर सेगमेंट से विदा लेती है। सुनते रहिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल, शो चल रहा है हेलो जयपुर, और इसके तुरंत बाद वक्त हो जाएगा आपके फरमाइशी फिल्मी संगीत के सेगमेंट का। बने रहिए हमारे साथ।

हेलो जयपुर, सुन रहे हैं आप और वक्त हो चला है फरमाइशी फिल्मी संगीत का। जी हाँ, फरमाइशी फिल्मी संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जहाँ आप करते हैं फ़ोन हमें। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, जयपुर का एसटीडी कोड है 0141 और फ़ोन नंबर्स हैं 2200600। हमारा दूसरा नंबर है 2366477। इस नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए, अपनी फरमाइश बताइए और सुनिए वो गीत जो सुनना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, क्या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं। और देखिए, हमारे पास कॉल्स आना शुरू हो गए हैं। जो पहली फरमाइश हमें भेजी है अशोक सिंघवी जी ने जबलपुर एमपी से, वो सुनना चाहते हैं वीर ज़ारा फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साथ दिया है उदित नारायण प्रिथा मजूमदार ने, गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और कंपोज किया है मदन मोहन ने।

हेलो जयपुर में फरमाइशी फिल्मी संगीत का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, मैं हूँ मयूरी। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि खुशियों का त्यौहार बन जाते हैं, और ऐसा ही खास दिन होता है जन्मदिन का। हमारे पास अभी एक संदेश आया है। संदेश भेजने वाले का नाम है नारायण पटेल, जौहरी बाजार से। ये धर्मिशा पटेल और विनय पटेल को कहना चाहते हैं कि जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, आपकी ज़िंदगी हमेशा मुस्कुराहट से भरी हो, हर सपना आपका पूरा हो, हर दिन नई उम्मीद लेकर आए और सफलता आपके कदम चूमती रहे। आपकी हंसी यूं ही सदैव चेहरे पर सबकी मुस्कान बिखेरती रहे। आने वाला हर वर्ष आपके लिए नई उपलब्धियों और नई खुशियां और ढेर सारी यादें लेकर आए। आकाशवाणी जयपुर परिवार की ओर से भी आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मोहम्मद रफ़ी व साथियों की आवाज़ में फ़र्ज फिल्म का ये गीत डेडिकेट करना चाहते हैं धर्मिशा पटेल और विनय पटेल को।

अगली फरमाइश हमें भेजी है मोहम्मद रफीक ने मूंगड़ा बालूतरा से। ये सुनना चाहते हैं डोली फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में। राजेंद्र किशन ने गीत के बोल लिखे हैं, रवि का संगीत है।

अगली फरमाइश हमें भेजी है भीम सिंह जी ने, साथ सुन रही हैं इनकी धर्म पत्नी पुष्पा देवी। इन्होंने हमें कॉल किया है राजस्थान के अलवर जिले से, गांव कारेचरा से। ये सुनना चाहते हैं रमैया वस्ता मैया फिल्म से अरिजीत

अगली फरमाइश हमें भेजी है, अगली फरमाइश हमें भेजी है विवेक ने बनी पार्क जयपुर से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म रॉक ऑन से ये गीत, जिसमें आवाज़ है फरहान अख्तर की। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

देवेंद्र कुमार गुप्ता जी ने कोटा से फिल्म बावरे नैन से ये गीत सुनना चाहते हैं गीता रॉय और मुकेश की आवाज में। रोशन राजेश रोशन का संगीत है और किदर शर्मा ने गीत के बोल लिखे हैं।

अगली फरमाइश हमें भेजी है फारूक अली खान साहब ने कस्बा गुन्नौर यूपी से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म हाथ की सफाई से ये अगला गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत है। गुलशन बावरा ने गीत के बोल लिखे हैं और कल्याण जी और आनंद जी ने इस गीत में संगीत दिया है। साथ ही ये गीत सुनना चाहते हैं बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी जी। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये अगला गीत।

अगली फरमाइश हमें भेजी है बशीर जी ने बाड़मेर से। ये सुनना चाहते हैं नूर जहां की आवाज में कोई भी गीत। इनके लिए हम लेके आए हैं मिर्जा साहिब फिल्म से नूर जहां की आवाज में ये गीत। कुमार जलालाबादी ने गीत के बोल लिखे हैं। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पर इन फनकार की आवाज में ये गीत।

0: फिल्म संगीत में अगली फरमाइश हमें भेजी है बिट्टू ने जगतपुरा से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म टशन से सुनिधि चौहान की आवाज़। गीत के बोल हैं छलिया, सुनिधि चौहान के साथ पीयूष मिश्रा ने इस गीत में साथ दिया है, अन्विता दत्त ने गीत के बोल लिखे हैं और धुन है विशाल शिखर की।
1: नसीला नसीला तेरा नैना।

हेलो जयपुर में वक्त है फरमाइशी फिल्मी संगीत में अंतिम फरमाइश शामिल करने का। ममता लखोटिया ने रामनगर जयपुर से हमें ये फरमाइश भेजी है। रखवाला फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में साथ दिया है मोहम्मद रफ़ी ने। इंदरवीर की रचना है और कल्याण जी और आनंद जी का संगीत है। इसी गीत के साथ मुझे यानी मयूरी को आप आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे हेलो जयपुर कार्यक्रम। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल दिन के 12 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल। आपको बता दें, हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ पलों के इंतजार के बाद ठीक 12:10 का समय लोक संगीत कार्यक्रम का होगा, जिसमें आज फिरोज जौहरी के गाए कुछ लोक गीत हम आपको सुनवाएंगे। 12:40 से कुछ फिल्मी तराने फिल्म संगीत के तहत, और दिन के 1:05 पर भी आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। 1:30 का समय पणिहारी कार्यक्रम का होगा।